0: पैदा होता है ना बच्चा, तो मैं गोद में लिया था, मैंने कहा मैं तबला ही बुला था।
1: And playing tabla, I still hadn't noticed that I was doing that. I was just having fun.
0: ये भी बहावज का है और ये भी बड़ी ये भी चक्करदार है मतलब।